भगत जना के मन विसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नाग मनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लगदा लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्ना कोल सुखां दी मनी सुख मनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते हैं, घर परिवार के भी कलेश मुक जाते हैं, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतों के हिरदे विच होंदा है। भगत जना के मन विसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी वस जाए वह भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है। फुल चुक दी खीमा गुरु बख्शिश करे, रहमत करे, पाडे साडे ते सबना ते चढ़दी कला सब दे कारज रास। भाई लखविंदर सिंह जी वो आप जी दे सन्मुख होणगे, गुरमत विचारा द्वारा तुहानू निहाल करनगे, साडियां फुल्लां बख्श लैणियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

अंतलय छड़ाया इक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न हुई, तू करता करना मैं नाही जा हो करी न हुई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई, लखिया रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहे आ। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते कियां बातां, जो किछ करना सो कर रहे आ। सो दर राग आसा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो दर तेरा केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वावन हारे।

तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सुवारण हारा, आसा महला पहला।

हर रस नाम न पाया, भागहीन जम पास जो सतगुरु शरण संगत नहीं आई। त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवां।

मन भहो करिया ऊडे ऊडा वै सह कुसा तिस पाछे बचरे चरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्यावह सब

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं। कबो बात बेनती चौपाई हमरी करो हाथ, दह रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काबू, आप हाथ दह

शत्रु हमारी मारी है, आप हाथ दे मुझे उवरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, ऊजो सदा हमारे पच्छाओ, श्री आस तुझु करे हो रक्षाओ, राख ले हो महिराखन हारी, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बांध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा,

नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायु, देव दैत जच्छन उपजायु, आदंतिक अवतारा, सुई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिव कन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मुँह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के

महामूढ़ कछु भेद न जानतु, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव, आप अपनी बुद्ध है जीती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाय पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा, एक कै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पुपा, अंडज देर जिसे तज कीनी, उत भुज कान बाहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकरी कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रचा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन खाता, जे आस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख

ताके काल निकट नह ऐ है रुच्छा हुई ताहि सब काला। दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाहि निहरिहु ताके ताप तनक मैं हरिहु रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई। दुष्ट छाह चवै सकै न

सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जानियो श्री सुपान कृपा तुमरी कर। मैं न कहूँ सब तो हे बखानियो दोहरा सगल।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल।

तिसका हुए उदार। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारु। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म सारु।

मेहरामत हुई सतगुर सज्जन मिलया, नानक ना मिलै ता जीवा, तन मन थी वह हरिया। दर्श

जिस सिमरत सुख हुए सगले दुख जाहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम

सिर करे एक पैर त्याए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किसी ऊपर ओ टिक टिक है

जिन गुरु मिलाया। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोदी च सभाए मान गुरु सवारी साध संग जीओ करो रसना पवित्र आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह ने रहमत वरताई बख्शिश कीती है कुछ घड़ियां गुरु गोदी अंदर बैठ करके शब्द नाल बाबाणियां कहानियां नाल सांझ पाउण दा सुभाग मालक ने बख्शिश कीता है। कोटान कोट धन्नवाद करिए गुरु के कीर्तनीए बड़ी मिठी धुन दे विच आप जी नूं अलाही निरंकारी बाणी दा कीर्तन सरवण करवा रहे सन। उपरंत कुछ पलां दे लई सतगुर सच्चे पातशाह जी के महान खजाने विचों ए शब्द जो आप जी ने सरवण किया है इसकी विचार आपां करन दा यतन करांगे। सतगुर जी बख्शिश करदे ने दुखी होईयां आत्मावां नूं टुटियां होईयां आत्मावां नूं अकिरत कणां दे सताए हुए लोगां नूं

0: पाणि पिता माता धरत महात दिवस रात दोई दाई दाया खेलै सगल जगत चंगी आईया प्रिय आईया वाच धर्म हतु करमी आपू आपनी खेने
1: जिन्नी नाम त्याया

0: हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गये नानक इहां सुख आगे मुख उजल संग संतन के पाइये हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गये नानक इहां सुख आगे मुख उजल संग संतन के पाइये वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोहेला रा गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीरता की है करते का होए विचारो तुत कर गावो सोहेला सिवरो सृजनहार तुम गावो मेरे निरपहु का सोहेला हो वारी जित सोहेले सदा सुख होए रहा नित नित जियड़े समालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने की मतना पवे तिस दाते कमन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन सीसड़िया जो हो सब सुमेल कर कर इहो पहुंचा सदले नित पवन सदन हारा सिमरे नानक से देह अमन राग असमहला पहला छे कर छे गुरु छे उपदेश गुरु गुरे को वे सनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो खर राख बढ़ाई तो रहाओ विश्वे चसियां कड़ियां फैला थी तिवारी महा होवा सूरज एको रुत अनेक नानक करते के ते वे इस राग तना श्री महला पहला गगन में थार रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती तू उपमल आन लो पवन चबरो करे सगल बन राय बुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजन तेरी रहाओ सहस तब नैन न नैन है तोहे को सहस मूरत न एक तो ही सहस पद विमल न एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस कै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए ज्योतिष पावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिन मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर गंडाओ पुन वड्डा है रहाओ साकत हर रस साध न जाने तिन अंतर हो मैं कंडा है ज्यो ज्यो चले चुपे दुख पावे जमकाल सह है सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पहु खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बदवड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो विनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला आउद कटे दिनस रहन आरे मन गुर मिल का सवारे रहाओ एव संसार विकार संसी में तरेव ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया वे एव रस अकत कता तिन जानी जां को आए सोई बिहा जो हर गुर ते मन है बसेरा निज घर महल पाओ सुख सहजे बो न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की पूरे अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की पूरे वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह तुद्यागे अरदास हमारी जियो पिंड वाहिगुरु कहो नानक साहब तेरी वडियाई कोई नाव न जा मेरा वाहिगुरु बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुण नानक लय तिहाय फिरंगत गुरति अमरदास रामदास साहा हे अर्जुन हरगोविंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण तिहाइया जि जिथे सब दुख जाए तेज बहादुर सिमरिया घर नो निदावे ताए सब थाए साह। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाए साहा हे दसवां पातशाह दी आत्मिक जोत जागती जो चौरत खदे मालिक धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार का ध्यान धरके खालसा जी साहब बोलना जी वाहे। निमाणिया के माण ताणिया के ताणी ओटिया की ओर धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जागती जोत आप जी के चरणा कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी सतगुरु जी आप जी ने पार बख्शिश कृपा की अमृत वेले तो लैके इस वेले तक संगतान को खुले दर्शन दीदारे बख्शन सतगुरु जी आप जी का कोटान कोट धनवाद। शामा दे दीवाना की समाप्ति तो उपरंत आप जी के पावन पवित्र सूप की सेवा की गई है। सुहला जी के बाणी के जाप किए गए सतगुरु जी बाणी पढ़द आप जी की सेवा करद आप जी सेवका को बेअंत प्रकार त्रुटियां हो जाएं सतगुरु जी आप अपने अनजाण बच्चे संखी कीमा करना अगे तो सुमत बख्शना। आप जी के भाणे के अंदर चार पहर का दिन सुखा नाल बतीत होया है सतगुरु जी चार पहर की रात्रि आई है सुखा नाल बतीत करावनी। इस वेले आप जी के पावन पवित्र स्वरूप सुगासना रही सचखंड श्री हरिमंदर ले जाण लगे सतगुरु जी रस्ते वाद घाट तो बचा के रखना अपनी सेवा आप लैनी फिर अमृत वेले दर्शन देने की कृपालता करनी अमृत वेले दे जागने इसनान नितनेम बखने सतगुरु जी इस वेले आप जी की सेवा विच सिख संगतां ते सेवादार हाजर आप चाले पाउण की कृपालता करो जी। सही प्यारे मेल जिन्ना मिले आप जी का नाम चित आवे नानक नाम चढ़ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गावे को विद्या विकम विचार, गावे को साज करे तन के हे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को विके हाजरा हदूर, कतना कति न आवे टोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देता दे ले दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाही, हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक विकसै वे प्रवाहु।

मुहां के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार करमे आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवे जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावीए गुणी निदान गावीए सुनिए मन रखिए भाउ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रिया सुमाई गोरी सर गुर गुर कबरमा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस्पावा विन पाने के नाए करी जे ती सिर ठुपाई वेखा विन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर सुनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा ना उर खाए कह जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई तवात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोय न सुझे जे तिस गुण कोय करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत धवल आकाश सुनै दीप लो पाताल सुनै कोय न सकै काल नानक भगता सदा विगा सुनै दुख पाप का नाव सुनै ईश्वर वर्मा इंद सुनै मुख साला हनुमंद सुनै जोग जुग तन भेद सुनै शास्त्र सिमृत वेद नानक भगता सदा विगा सुनै दुख पाप का नाव सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै अठसठ का स्नान सुनै पढ़ पढ़ पावह मान सुनै लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगा सुनै दुख पाप का नाह सुनै सरा गुणा की गाह सुनै सेख पीर पातशाह सुनै अंधे पावह राह सुनै हाथ वै सगाहु नानक भगता सदा विगा सुनै दुख पाप का नाश मन्नी की गत कही न जाए जी को कह पिछे पछताए कागद कलम न लिखन हार मन्ने का वह करण विचार ऐसा नाम निरंजन हुए जी को मन जाने मन कोए मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मुँह चोटा न खाए मन्ने जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जिको मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ्यो प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंधु ऐसा नाम निरंजन होए जिको मन जाने मन कोए मन्ने पावह मुख द्वार मन्ने परवार साधार मन्ने तरै तारे गुरसिख मन्ने नानक भवै न भिख ऐसा नाम निरंजन हुए जिको मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोह दर राजान पंचा का गुरेख ध्यान जे को कह करै विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवे सचियार धवल उपर किता भार धरती होर परै होर होर तिस्ते भारत लै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुरी कलाम एहो लिखा लिख जाने कोए लिखा लिखिया किता होए किता तान सवालिहो रूप किती तात जाने कौन कूत किता पसाओ इको को आओ तिस्ते हुए लख दरियाओ
कुदरत कवन कहा विचारु, वारिया न जावा एक वारु, जो तुझ पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप संख पाहु, संख पूजा संख तप ताहु, संख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोहक सार, असंख मोह लिवलाय तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भक खाए, असंख निंदक सिर कर है भार, नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिने लिखे तिस सिर नाहे, जे फरमाए तिव ते पाहे, जीता कीता तेता नाओ, विण नावे नाही को थाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिए हथ पैर तन देहे, पानी धोतै उतर सखेहे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइयै उ धोए, भरिए मत पापा कै संग, ओ तो पै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहु, आपे बीज आपे ही काहु, नानक हुक्मी आव जाहु, तीरथ तप दया दत्त दानु, जिकु पावै तिलका मानु, सुनया मनया मन कीता पाहु, अंतरगा तीर्थ मल नाहु, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विन गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आत बाणी बरमाओ, सत सुहान सुदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिरुती माओ कवन, जित हुआ आकार, वेल न पाईया पंडती, जे हुवै लिख पुराण, वक्त न पायो कादिया, जे लिखण लेख कुरान, हितवार ना जोगी जाने, रुतमा हु ना कोई, जा करता सिर ठीको साजी, आपे जाने सोई, क्यों करे आखा क्यों सालाही, क्यों वरनी क्यों जाना, नानक आखन सब को आखै, एक दू एक सियाना, वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का हुवै, नानक जी को आपो जाने, अगे गया न सूहै, पाताला पाताल लख आगास आगास, ओढ़क ओढ़क भाग थके, वेद कहनक वात, सहस अठारह कहनक त्रिबास, लू एक धात, लिखा हुए ता लिखी है, लिखे हुए विनाश, नानक वड्डा आखी है, आपे जाने आप, सालाही सालाही ती सुरत न पाईया, नदियां तैवा पवह समुंद न जानी है, समुंद सह सुल्तान, गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मनो न विसरह, अंत न सिफती कह नंत, अंत न करने दे नंत, अंत न विखण सुन नंत, अंत न जापै क्या मन मंत्र,

देख को कह न सकत के ही अचल मूरत अनुभव प्रकाश मितोज कही जय कोट इंद्र इंद्रान साहि साहान गणि जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तिन कहत त्व सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत पुजंग प्रया छंद नमस्तंग काले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग रूपे नमस्तंग पेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काये नमस्तंग अजाये नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग तर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग चेदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे नमस्तंग सुवेक्य नमस्तंग अनिकय नमस्तंग अभूते नमस्तंग अरूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग भूते नमस्तंग लोके नमस्तंग शोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग तापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग गाहे नमस्तंग बाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग गम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस अजब्वे अधिस्तंग देशे नमस्तंग पेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वकापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेवै नमस्तंग पेवै नमस्तंग जनमे नमस्तंग सुभनमे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्दयाले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारं नमस्तंग कृतारं नमो सर्वतन्दे नमो सत्तवंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनन्ते नमस्तंग महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वपोकं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी चंतुआ प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है अदे है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है सर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचांज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निर्सीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिरीक है भुजंग प्रयाचंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदानी नमो देव देवे अपेकी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम युगते नमो नित नारायणी क्रूर कर्मे नमो प्रेत अपरे देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पूप पूपे
नमो दान दानी नमो मान माने नमो रोग रोगी नमस्तंग सनान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वं करनासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धता भूतदा भृतकर्ता अदु उर्द अर्दंग अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अछेदी अपेदी अनामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्तता मंग तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रछंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमस्तुंग नरनाथे नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्ये कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनाशी सदा सर्वदारिद्र सिद्धं निवासी चरपड छंत्व प्रसाद अमृत कर्मी अमृत धर्मी अखल जोगी अचल भोगी अचल राजी अटल साजी अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग पुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल चंत्व प्रसाद आद रूपन आद मूरत अजोन पुरख पार सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदारु सर्व पालक सर्व कालक सर्व कूपन काल जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम थावना जात जाकर रूप रंग नारेक आद पुरख उदार मूरत जौन आद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख नाराग जतर ततर दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेखत ताम हूँ नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदै मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिरेक देव पेव न जा नहीं जे बेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जानी के जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापी जह जाप आद देवन आद मूरत थाप्यो सबै जे थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरखा पार सर्व विश्व रच्यो सोयम पव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहता भूत लख अपे संग रग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमित अनुष्ट देख पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंगहीन भंग नातमेक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जान ही जे रूप रंग अरेक परम वेद पुराण जा कह नित पाकत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र नया वही वह चित मत पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार असन भंग उपमा नांगन भव प्रकाश निश्चिन अनासा जन बाहु साहन साहु राजन राज भानन भान देवन देव उपमा महान इंद्रन इंद्र बालन बाल रंकान रंकालन काल अनभूतांगा बापांगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्वत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्मा दृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्यंडन बाटे चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्णामे अकामे पुजंग प्रिया छंद
चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाली चतुर चक्र काली चतुर चक्र पासी चतुर चक्र वासी चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी चांदन सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काहे जन्मंग जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रति सदिश दृश्य दृश्य भगवती छंत प्रसाद कथते किया चिज देश गया भिज भेष गया गंज कर्म है गया पंज पर मैं गया भिज लुक है के आदित सुख है के अवतूत वर्ण है के विभूत करण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्व अपर्ण है के जगतंग कृति है कि छत्रंग क्षत्रिय के बर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आदि देव है के आप अपे वह कि चित्रंग बही ने के अधीन है

पाओ। के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र भूख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान है, के सर्वत्र जाप्य है, के सर्वत्र थाप्य है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग अलिम है, के परमंग अलिम है, के अकल अलम है, के साहिब कलम है, के हुसन अल वजू है, तमामुल रुजू है, हमीसल सलाम है, सलीकत मुदाम है, गनीमुल शिकस्त है, गरीबुल परस्त है, बिलंदुल मकान है, जमीनुल जमान है, तमीजुल तमाम है, रुजुअल निदान है, हरीफुल अजीम है, रिजायक यकीन है, अनितल तरंग है, अपेद है, अपांग है, अजीजुल निवाज है, गनीमुल खिराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुगत प्रभा है, सुजुगत सुधा है, सदैव स्वरूप है, अपेति अनूप है, समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तुल सलाम है, सदैव काम है, निर्बाध स्वरूप है, निर्बाध है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओंगाध रूपे, अनाध स्वरूप है, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे, त्रिभर्गंग त्रिभाते, अगंजी अगाधे, सुभंग सर्वभागे, सुसर्वानुरागे, त्रिभुग स्वरूप है, छिज है, अछूत है, किन्नरक प्रणास है, प्रतुल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विपुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विपुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी छंद अपांग है, अनंग है, अपेक है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, भूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, धंत है, बंध है, भक्त है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनित है, अलिख है, दिख है, अलिख है, अपेक है, अटा है, अगा है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, आजात है, आजाद है, चरपड़ चंद्व प्रसाद, सर्वघंता, सर्वघंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग त्राणं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग तर्मं, सर्वंग युक्ता, सर्वंग मुक्ता, रसावल चंत्व प्रसाद, नमो नरकनाशे, सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे, अपंगं विभूते, परमात्म परमात्थे, सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे, निर्बाध विभूते, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे, निर्भंगी स्वरूपे, सर्वंगी अनुपे, न पुत्र न पुत्र, न सत्र न मित्र, न ताते न माते, न जाते न पाते, निर्साकं शरी कैमितो अमी कै, सदैव प्रभा है, अजय अजा है, भगवती छंद्व प्रसाद, के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, हमीसुल सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के हुसनल चराग है, के कामल करीम है, के राजक रहीम है, के रोजी देहांद है, के राजक रहिंद है, करीमुल कमाल है, के हुसनल जमाल है, गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सिकान है, हिरासुल फिकान है, कलंक प्रनास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब किरा है, के नरकंग प्रणास है, बहस्तुल निवास है, के स्वर्बुल गवान है, हमें सुलरवान है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परमीश है, समस्तुल अधीश है, आदिशुल अलेख है, हमें सुल अपेख है, जमीनुल जमा है, अमिकुल इमा है, करीमुल कमाल है, के जुरत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के मितो सुभाष है, के अजब स्वरूप है, कि मितो विभूत है, कि मितो प्रसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि मितो अपांग है, मद पार छंद त्व प्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुनगन मुदाम, हर बर गंज, हर नर पर पंजु, अनगन प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, वन पवनास, मुन मन प्रकाश, गुनगन प्रणाम, जल थल मुदाम, अंचिज अंग आसन अपांग, उपमा पार, गतमित उदार, जल थल अमंड, दिश अपांड, जल थल महंत, दिश विश्व अंत, अन पवनास, त्रितर तुराज, आजान बाहु, एक सुदाहु, ओंकाराद, कथनी अनाद, खलखंड ख्याल, गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चित चरण नाम, अंचिज गात, अजिज न बात, अंचंज गात, अन रंज बात, अन टुट भंडार, अन डट अपार, आडीट धर्म, अत टीट कर्मन ब्रननंत, दाता महंत, हर बोल मना छंत्व प्रसाद, करुणालय है, अर्काल्य है, कलखंडन है, मैं मंडन है।

जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्ववारण है, तृत के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से कलखंड से परते पर है, करुणा करें, जपा जप है, तपा तप है, अकृता कृत्य अमृता अमृत्य अमृता अमृत्य करुणा कृत्य अकृता कृत्य धरणी तृत्य मृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत्य अमृता अमृत्य जपा कृत्य अमृता अमृत्य निर्णायक है, कलकायक है, विश्वम पर है, करुणालय है, निर्भनायक है, सर्पायक है, पापंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयाचंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंग तामसंग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कला कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे नादंग विभूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो वासासे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, कचरी चंद, अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनाश आकाश अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयालु अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथ्य परमाथ्य अजो नियम उन्नी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परम अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासे सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल को निंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय गनिमे हरियंग करियंग करिमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वय प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदातिक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रती बिन एक रती के मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारी कोट तुरंग कुरंग से कूद तो पौन के गौन को जात निवारे पारी भुजान के पूप पली भिद न्यावत शीश न जात बिचारे एते भये तो कहा भय पूपत अंत को नंगे पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे पूत पवेक भवान के पूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पिख है पौन आहार जति जतार सब सुविचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रती बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सुना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परि मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरूर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे
श्रीपा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहाँ निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार है सार की तार पछैया तोर्त देश मलिंद मुआसन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को सरनायक जाचक नेक सुवेक दवैया दानव देव फनिंद निसाचर पूत भवेक भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं तल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन पर थापन बाढ़ जय तुन पापन के भ पुंज कपेंगे साध समूह पर सन फिर जग सत्र सब अवलोक जपेंगे मानव इंद्र गजिंद्र निराध पजौन तरलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म ही सर्विष्ण सचिपत अंत पसी जम्फास भरेंगे जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग ते नर फिर न दे तरेंगे का भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो भक्त्यान लगायो नाथ प्रियो लिये सास समुन्द्र लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बखियान सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह से बितायो साच कहूँ सुन ले सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो काहू ले पावन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मह काहू पछा को शीश निवायो को वतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को वतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई अमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दै मुहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैरन को आ संघरिए पूर्ण होए हमारी आसा तूर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिए चुन चुन सत्र हमारे मारिए आप हाथ दै मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करे हो रक्षा राख लिहो मुह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जच्छन उपजायो आदंतिक कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो कट कट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचान कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा जब आकर्क करत हो कबू तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सिर सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ
ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कृपान अनुमानत मां मूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भेव आप अपनी बुद्ध है जीती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तीती तुमरा लखा न जाय पसारा के बिन सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही फूपा अंडज जेरज से तजगिनी उत्पुज खान बाहुर रच दीनी कऊ फूल राजा हवै बैठा कऊ सिमट पै शंकर कैठा सिगरी शीर्ष दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन काता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला कृपा दृष्ट जाहि निहरो ताकि ताप तनक मैं हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई दुष्ट छाछव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो का दारिद दुष्ट दुख तेरा खड़के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दै लेहु बारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को छय करता श्री अस्तुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुनै गुंग जो याहि सुरस न पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भव निखड़ना तिन्नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पुनि जय अर्ध सहस पुन तीन कही जय भाद्रव सुधिष्टमी रवारा तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा सोईया पाए गए जब ते तुमरे तब ते कुआंक तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मतेक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कह अमेक न जान्यो श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो ही बखान्यो दोहरा सगल

सतगुरु मिलै जिसे आई, कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आई, ए शरीरा मेरे आ, हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया, हरे आपे माता आपे पिता, जिन जियो पाए जग तिखाया, गुरु प्रसादी पुजिया ता चलत हुआ, चलत न दरियाया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग में आया, मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख न व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे, आपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभा मिलिया, करण कारण जोगो, ये शरीरा मेरिया, इस जग में आए कह क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुझ शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक शरीर प्रवान हुआ, चिन सतगुर स्यों चित लाया, हे नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह ज्योत तरी, हर बिन वरन देखो कोई, हर बिन वरन देखो कोई, नदरी हर निहालिया, यो भी संसार तुम देख दे, यो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जावे कार इक है, हर बिन वरन कोई, कह नानक के नेत्र अंध से, सतगुर मिलया दिव दृष्ट होई, ए सरवण हो मेरे हो, सच है सुनना नो पठाए, सच है सुनना नु पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समानी, सच लख विडानी, ताकि गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो, सच है सुनना नु पठाए, हर जीव गुपांदर रख कह, वाजा पवन बजाया, बुजाया वाजा पाऊ नौ द्वारे, प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए पावनी कना, दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाऊ नव निद, तिस दांत न जाई पाया, कह नानक हर प्यार है, जियो गुफांदर रख कह, वाजा पवन बजाया, इहो साचा सोहेला साचै कर गावो, गावो ता सोहेला कर साचै, जिथै सदा सच त्या वहे, सचो त्या वहे, जा तुत पावे, गुरमुख जिना बुझावे, यो सच सबना का खसम है, जिस बख्शी सूजन पावे, कह नानक सच सुहेला सचै कर गावे, आनंद सुनो।

प्रोग्रेमिवाच अंतर जामे सुपर जीव आप जी दर दी हाजिरी पढ़ने हैं बेअंत गुरसिख माई पाई बलो आप जी दी बाण दे सत्कारो जो बेअंत माया बेटा बलो आप जी सारो सिखिदान प्रोसादान चुना कोना प्यार वस्मा खजाने पर पुरतने सो आओ गुरु प्यारी साथ संग जीव कीर्तन दी इनिक सेवा प्रवान करनी होइया पुलान चुका दी खिमा करनी आओ अगले प्रोग्राम कथा दे श्रवण करिए सत्कार्यो सिख पंथ दे विद्वान ज्ञानी सकत्तर सिंह जी उन्हां पासों अज दे श्री मुखवाक दे विचार गुर इतिहासिक इतिहास श्रवण करिए दस वालों फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अमृत छाड़ बिखे बिख काही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत,

0: ग्यारहवीं तरह के बारहवीं तक। सो डॉक्टर अलंकार सिंह जी पटियाला यूनिवर्सिटी वाले साढ़े पास आ रहे हैं 28 तरीक न जिन्होंने कीर्तन करना है 11-20 तो लैके 12-30 तक। सो सारे संगत इस समय जरूर पहुंच के लाभ सब जतन करो। बाकी सात संघ जून 26 तो लैके 28 तक विआह पर मनाया जा रहा गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का। सात संघ जी तो आप संगत पता है कि श्री संकट की संगत हमेशा आप संगत साथ इस समय में जरूर अवेल करते हैं। गुरु साहबान का गुरपुरब जो है विआह पुरब इस मना के पूजा खुशियां प्राप्त करते हैं। रजन का विआह पुरब मना वास्ते सारी संगत बेनती है कि तुम 26, 27, 28 हाथियां भर के जरूर पूजा खुशियां प्राप्त करो। बाबा जी साहब तैयार नो प्रारंभ करने के सबू करिए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।
1: वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी समा होया अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ का सुपावन अंग 492 तो अज आप अगे श्री सहज पाठ प्रारंभ करने हन। प्यार सहित आप जी ने हाजरियां भरनिया हैं जी। 492 अंग तो श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं।

सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन केवट भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुरु संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया।

मिल सत्संगत शब्द मन मोह है। जप गोविंद गोविंद ते आई है, सब को दान दे प्रभु है।

लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाय। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नावै त्रिग त्रिग बिरथा जाई। नाम बिना रस कस दुख खावै, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभ हर

गुजरी महला चौथा गुरमुख सखी सहेली मेरी मुकव देवो दान हर प्राण जीवाया हम हो वह लाले गोले गुर सिखा के जिना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरे मन तन बिरहो गुर सिख पगलाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई।

मिले जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया वडभागी गुर केसक प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सत संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुरु संगत संग न पाया से भागहीन पापी जम खाया।

मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिबलाई। गुजरी महला चौथा, चौपदे घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चित वह उद्दम, जा आहर हर जीव प्रया। सैल पत्थर मह जंतु उपाय, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सतसंगत मिले सितरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके काष्ट हरिया रहा, जनन पिता लोक सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर। काहे मन भाव करिया,

बिहारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मद्दे को विरला सेवक और सगले ब्योहारी राव।

मन वेखो कर बिचारी, अठसठ मज्जन कर इस नाना, भ्रम आए धर सारी, अनिक सोच कर है दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी, धावत धावत सब

हलत पलत कै संगे, लाद खजाना गुर नानक को दिया, एहु मन हर रंग रंगे। गुजरी महला पंजवां, जिस सिमरत सब

सागर तरिया। गुर हर बिन को न वृथा दुख काटे, प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है। तित मान महत जस काटे रहाओ।

रहाउ। इष्ट मीत बंदप सुत भाई, संग बनता रच हसया। जब अंति अवसर आए बन्यो है, उन पेखत ही काल ग्रसया।

करण हार पुछाता, जिसका सातिन ही रख लिया सगल जुगत बने आई। कहो नानक प्रभ पुरख दयाला, कीमत कहण न जाई। गुजरी महला पंजवां, दुपदे घर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पतित पवित्र लिए कर अपने, सगल करत नमस्कारू। वर्ण जात को पूछे नाही, बाछ है चरण रवारू। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारू, सगल सृष्ट को तनी कही जय। जन को अंग निरारू रहाओ, साध संग नानक बुद्ध पाई। हर कीर्तन आधारू, नाम दे उत्तर लोचन कबीर दासरू। मुक्त भयो चमियारू, गुजरी महला पंजवां है नाही।

तिन की हैरत कछ ना रही। बलवंत व्याप रही सब मही, और न जान सको मरमा, गुर कृपा ते लही रहाओ। जीत जीत जीते सब थाना, सगल भवन लपटही, कहो नानक साध ते भागी, होए चेरी चरण गही। गुजरी महला पंजवा, दुए

चाले पूरा। ठाकुर तुझ बिन आहि न मूरा, वोहि अनाथ निर्गुण गुण नाही। मैं आयु तुमरा तूरा रहा, बल बल बल बल।

सहज सहज गुण गाई, साजन ऐसो संत सहाई। जिस भेटे तू टह माया बंद, बिसर न कबहू जाई। रहा करत करत अनिक

रहाओ। तुम्हारी टेक पूरे मेरे सतगुर, मन शरण तुम्हारे परी, अचेत याने बारिक नानक, हम तुम रखो धार करी। गुजरी महला पंजवां।

चित चितवों हर रसन आराधो निरखो तुमरी और रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करूं कर जूर, नाम जपै नानक दास तुमरो उदरस आखी फूर। गुजरी महल्ला पंजवा।

सुख अनंत सेती घर जाइए, जाते काल न बिरती जाइए, आठ पैर सिमरो प्रभ अपना, मन तन सदा त्याइए रहाउ, मोहे शरण दीन।

सह पैज रखाइए गुजरी महला पंजवा विश्वंपर जीयन को दाता भगत भरे भंडार जाकी सेवा निफल ना होवत खिन मह करे उदार।

हर सरनायु गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथिया भज सदा भगवंत।

करण कारण सम्राट श्री धर शरणता की गही मुक्त जुगत रवाल साधु नानक हर नित लही। गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सत।

सुख सहज आनंद पाव है, मिली निर्मलता उराव। साध संग उधार इहु मन, आठ पहर आराध। काम क्रोध अहंकार बिनसै, मिटे सगल उपाद। अटल अछेद अभेद स्वामी, शरणता की आऊ। चरण कमल आराध हृदय, एक स्यों लिव लाऊ। पार ब्रह्म प्रभ दया तारी,

करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप रखे पहे पूर्ण काम सास सास न बिसरो कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनिक रसना क्या बखाने अगणत सत

कीर्तन गोविंद रमणंग काटिए जम जाल काम क्रोध लोभ मोह मूठे सदा आवागवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र।

हर जन संत सर्व विद प्रमति पुकार है कत है नाही छूट हर चरण शरण अपार प्रभ के दिड़ गही नानक ऊट सर्व विद प्रमति।

पावन जुरी विच दोने बचे सुभाईमान सतगुरु जी हजूरी विच सच चुकी हैं जी। सो परिवार नूं हुक्म होया सी कि जा तू मेरे वल है ता क्या मां शंदा तू सब कुछ मैनूं सौंपिया जा तेरा बंदा

बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई। कुछ हैपन संसार च होंदियां ने कई बार जो असीं पसंद नहीं करते पर हो जांदियां। उस सतगुरु जी कहते हैं जो तुम करो सोई पल हमारा। परमात्मा तो साढ़े भले वास्ते ही करता है, कुछ सानू लैसन सिखाना होंदा जिहड़ा असीं सीखते नहीं। कई बार कहते मैनू पता है, मैनू पता सब कुछ पता, कुछ नहीं पता होंदा। सो गुरु साहब वाहिगुरु सानू कोई लैसन सिखाना चाहते ने तो सानू झटका लगता है, कोई दुख आ जाता है। सो सतगुरु जी मेहर कर, समा पूरा हो गया, सात संगत एक दो मिनट उपर जा रहे खेमा चाहते हैं। ऐतवार शाम को असी 6 to 7 कीर्तन करते हों, सात संगत जी उस असी वाहिगुरु का नाम जरूर जपते हैं। पहला आरती होंगी है, 6 to 7 जरा प्रोग्राम होंगे, 6:10 to 7 तक, 6:10 to 7 प्रोग्राम के ऐतवार ऐतवार उस वाहिगुरु सिमरन भी होंगे। सो जिन्हों वीर भैन ने हूँ रेडियो से सुने, इंटरनेट से सुन रहे हैं, ज हूँ बैठे ने, जेड़े आना चाह जरूर संगत साथ दौ सा इतने सामने बैठ के। जरूरी नहीं होंगे कि उधर ही सारी बीबिया ने बहना, मेरे कई मित्र फ्रेंड फैमिली समेत इतने बैठ जाते हैं। नाल बैठो, सारे गाओ, क्योंकि सब ने रल के गुण गाने ने। केवल रागी पाई का काम नहीं है गुण गाना, तुम सारे उत्थे बैठे भी गुण गा सकते हो। गुरु महाराज कृपा करन, भुला चौंका दी खिमा

समूह प्रबंधक साहेबान धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का जिन्ना शुकराना करिए थोड़ा है, डॉक्टर गुरनाम सिंह, वीर गुरप्रीत सिंह, वीर राजविंदर सिंह जी उस्ताद जी और भाई निर्मल सिंह जी जिन्हां दे उद्दम सदका समूह प्रबंधक साहेबाना का सदका अपना सारिया ने कि जो महाराज की बाणी सारी रागों में गाई है, निरोल रागों में गा के हाजरी भरी है। आओ हुण समाप्ति है, सलोक पढ़ांगे, नाल ही अरदास विच अपन गा।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

भगत जना के मन बिसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नागमनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्ना कोल सुखां दी मनी सुखमनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवार दे भी कलेश मुक जाते ने, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन बिसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी बस जाए ओ भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है। भुल चुक दिखी मां गुरु बख्शिश करे रहमत करे, तुहाडे साडे ते सभना ते चढ़दी कला सब दे कारज रास। भाई लखविंदर सिंह जी वो आप जी के सन्मुख होंगे, गुरमत विचार द्वारा तुहानू निहाल करनगे, साडियां भुलां बख्श लैणियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।